0: जब लग जाने मुझ ते कुछ होए
1: तब इसको सुख नाई कोए
0: जब ए जाने मैं किछ करता
1: तब लग गर्भ जोन मैं फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब लग निचल नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय दे सजाए
0: रब कृपा ते बंधन टूटे
1: गौर प्रसाद नानक हौ छुटे
0: सहज खटे लाको उठता वे
1: तृप्त न आवे माया पछे पावे
0: मन कपोग बिखिया के करे
1: नै तृप्तावे खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: स्वप्न मनोरथ बिरथे सब काजे
0: नाम रंग सरब सुख होए।

0: चितर गुप्त किस पूछत लेखा,
1: जब नाथ नरंजन गोचर गाते,
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे,
1: अपने आप ही अचर जा,
0: नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा,
1: जय निर्मल पुरख पुरख पाते होता,
0: तै बिन मैल कहूं क्या तोता,
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
0: तै कौन कौ मान कौन अभिमान,
1: जय स्वरूप केवल जगदीश,
0: तै शल शिदर लगत कौ कीस,
1: जय ज्योत रूपी ज्योत संग समावे,
0: तै किसे पू कवन तृप्तावे,
1: करण करावन करने हार,
0: नानक करते का नाई सुमार,
1: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई,
0: तब कौन माई बाप मित्र सुत पाई,
1: जय सर्व कला आपे परवीन,
0: तै वेद कतेब कहां को चीन,
1: जब अपने आप आप उधार
0: तो सगन अपसगन।

0: मात गोरी अमृत जाके दृष्ट
1: दर्शन पेखद उदर श्रेष्ठ
0: चरण कमल जाके अनूप
1: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
0: तन सेवा सेवक परवान
1: अंतर जामे पुरख प्रधान।

0: भूखा लागा मीठा
1: सगल सामग्री कस काट माहे
0: अनकरंग नाना दिष्टाए
1: नौन दे अमृत प्रभु का नाम
0: दे मैं इसका विश्राम
1: सुन समाद अनहत नाग
0: कह न जाए अचर्ज विस्माद
1: तिन देखिया जिसे आप दिखाए
0: नानक तेज जन सो जी पाए
1: सो अंतर सो बाहर अनंत
0: काढ़ काढ़ व्यापरिया भगवंत।

0: प्रभ की उस्तत करो संत मीत
1: सावधान एकाग्र चेत
0: सुखमणि सहज गोविंद गुण नाम
1: जिस मन बसे सो होत निदान
0: सर्व इच्छा ताकी पूरन होए
1: प्रधान पुरख प्रगट सब।

हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन शत्रु हमारे मारिया है, आ बहाद मुझे उबरे हैं, मरण काल का त्रास निवरे हैं, उजो सदा हमारे पशा, श्रीयस्तु जू करियो रक्षा, राख रे हो मैं राखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन

सगरी सृष्टि गाय अजम्भव आजुगा सर्व स्वयंभव अभ्रच्छा मेरी तुम करो सिख उबहार असिख संगरो दुष्ट जते उठवत उत्पाता सगल मलेश करो रणकाता जे अस्तो जा तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हव मरे पुरुख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्या है ताके काल निकट नह है रशा हुए ताए सब काला दोष्ट अरेष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाए ने हर हव ताके ताप तनक मैं हर हव रिद्ध सिद्ध गर्म सब होई दुष्ट छा शवाए

मोहो सहाय दुष्ट दोखते लेहो बचाई। कृपा करी हम्बर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता केलवेग सगल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शाय करता। श्री अस्त जपए दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तकाला मन बांझत बल पावे सोई दुखना तसे ब्यापत कोई अड़िल। सुने गुम जो याहे सुरसना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भव निगणत नर के रहाय ओज जाकी एक बार चौपाई को कह चौपाई। समत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस मुन तीन कह जय। भाद्रव सुधी अष्टमी रववारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्रो बखियाने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समापतम सत शुभम सत अभजू दोहरा। दास जान कर दास पर की जाए कृपा अपार आ बहादुर राख मोहे मान क्रम बचन विचार चौपाई। मैना गृषय प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबू न थ्या।

अपना जान मुझे प्रत परिया, चौन चौन शत्रु हमारे मरिया, देख तेग जग में दऊ चल, राखा मुहे और ना दला।

अर्थ है। अपना जान करो ब्रत पारा, तुम साहेब मैं किंकर थारा। दा जान दाथ उबारो, अमरे सबैरियन संगारो। प्रथम तरो भगवत को त्याना, बहर करो कविता बिदनाना। किशन जथा

की देह मौ कोटक बिशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा कि राव सज करो रजले दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत नेत सुरग बा सरग बरखरा सगरी पुरी समेत चौपाई जो ए कथा सुने अर गावै दुख पाप ते निकट न आवै बिशन भगत की ए फल होई आद व्याद शब सके न कोई सम्मत सत्रह सहस पछावन हाड़ बदी प्रथम सुखदावन त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पूर परी लो लियो सुधारा दुहरा नेत्र तुंके चरण तर

तायो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कब हूं मिट है नहीं रे पछतायो तत विचार यह मथुरा जग तारन का अवतार बनायो

गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी सुर सिद्ध गण गंधर्व ध्यावें जख किन्नर गुण पनी कोट इंद्र अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उदार कोट देवी जाको सेव लक्ष्मी अनक पांत गुप्त प्रगट जाको आराधे पौन पानी दिन सरात नखियतर ससियर सूर त्यावें

चतुर वेद खट शास्त्र जाको जपात पतत पावन भगत वशल नानक मिल गया संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत पनी अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी अवगत अगन।

पढ़ पढ़ के पढ़ पढ़ के द्वैत भावना ही दृढ़ करा रहे हैं। द्वैत की है? जड़ी दोवां दे विचकार दूरी पैदा कर रही है विचारधारा, उन्हों द्वैत कहते हैं। मैं बड़ा हाँ तू छोटा है, मैं ताकतवर हाँ तू नहीं, जा मैं ताकतवर बनना तेनू बनन नहीं देना, मैं बीटो पावर बनना तेनू मैं बनन नहीं देना, लड़ लड़ के भावें दोनों मर जान। ये सारी द्वैत है। महाराज जी कहते इन्ना कुछ पढ़न तो बाद, इन्नी मेहनत तो बाद यही दृढ़ करवाई जा रही है। जे कि ये दृढ़ करवाया जाए

काम करते तुरे फिरे होंगे, फिर ऐसा कुछ ही पल्ले पएगा। और देखो महाराज अगे वचन कर दे, बहु कर्म कमावे दुख सवाया। बहुते कर्म कमा बंदा ते उल्ट के बहुता दुख ही पल्ले पैंदा है। वाहिगुरु नूं भुल के संसार दे कर्मां च धर्म दे उपर उपरले फोट कर्मां दे विच पिया तां वी दुख ही पल्ले पैंदा है। ते वाहिगुरु नूं भुल के आ दूसरे द्वैत दे कम्मां च पिया होया बंदा ते ओ वी दुख ही हासिल करदा, दूसरियां लई वी दुख ही खटदा है। सतगुर सेव सदा सुख पाया। महाराज जी कहिंदे जिहड़े वाहिगुरु की सतगुरु की सेवा करदे आ ओ सदा सुख पाउंदे। उहनां दे नसीब दे विच सुख दियां घड़ियां लिखियां होंदियां ने। माफ करना, कई बार कई बंदियां दी ऐसी जिंदगी हुंदी है भी सारी जिंदगी च एक भी साह सुख दा नहीं देखदे। सारी जिंदगी कदे पहला कदे गरीबी ने मार ले, कदे बीमारियां बीमारियां ने मार ले, कदे मजबूरियां ने मार ले, कदे जिम्मेवारियां ने मार ले, अखीर च जो सारा कुछ नबेड़िया तो माड़ी औलाद ने मार ले। सारे पासे मारा ही पैंदियां रहियां सारी जिंदगी, ते जदों औलाद तो खेड़ा चुटिया फिर मौत ने मार ले। सारे पासे मारा ही मारा, मारा ही मारा। इसे करके महाराज जी कहिंदे आ ऐवें जने खणे दी निंदिया करना बह जा करो, ऐवें महाराज जी दी महाराज दे प्यारियां दी रब दे प्यारियां दी निंदिया करना बह जा करो। ये कर्म बंदा कर लैंदा, बाद च जदों भोगने पैंदे आ बंदा बहुत तंग हुंदा। फिर बंदे नूं झलण वेले पता चलदा भी जदों कर रहा सी उदों नहीं पता चलदा भी किन्ना दुख भोगना। भगत जी का वचन है, भगत कबीर साहिब जी का, कहिंदे अणहोण दा भार निंदक सिर धरा। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਕਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਲਯੁੱਗ ਐਸਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਹੀ अपने उदे च प्रौढ़ता दिती है, समय दे विच बढ़ावा दिता है। कोई चंगे काम करे उदी निंदिया करवा दिंदा, कोई रब दा प्यारा होवे उदी निंदिया करवा दिंदा, कोई

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru,
0: Vai Guru,
1: Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru

छूटत नहीं कोट लाख बाही, नाम जपत तह पार पराही, अनक विघ्न जय आय संगारे, हर का नाम तत्काल उधारे,

हमें शोरे देखो जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी पैर देह जन कह प्रभु दर्श प्यासा नानक ता कै बल बल जस सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जा का मिटै अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणी है सब ते उचा

बुरा मिटाना पेखे सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन समृष्टेता नानक पाप नहीं ले पा नीर्तन कवतन तेरो नाव निथा भी को नाव तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटाह को देव दान करन करामन हार स्वामी सगल कटाह के अंतर जामी अपनी गत मित जान हो आपे आपन संग आप प्रभ राते

हो ओर निभावन कहाँ बुझारत बूझे डोरा नेस कही है तव समझ जाए पोरा कहाँ विष्णु पद गावे गंग जतन कराए तव पी सुर भंग।

जाने अनेत बिरह की छाया स्यों रंग लावै ओह बिनसै ओह मन पछतावे जो दिसै सो चालन हाल लपट रहयो तह अंध अंधार।

हस्ता मिथ्या द्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपसी उपर करत गोमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीव हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है।

नानक तेरी रखे। जिह प्रसाद करहिं पुन बवदान, मन आठ पहर करत का ध्यान। जिह प्रसाद तू विचार विहारी, तिस ब्रह्म को साथ साथ चितारी। जिह प्रसाद रह सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरह सदा अनूप। जिह प्रसाद रि नेकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जिह प्रसाद तेरी पत रहे, गुर प्रसाद नानक जस कहे। जिह प्रसाद सुनह करनाद, जिह प्रसाद पेखे विसमाद। जिह प्रसाद बोलह अमृत रसना, जिह प्रसाद सुख सहज बसना। जिह प्रसाद हस्त कर चल है, जिह प्रसाद संपूर्ण फल है। जिह प्रसाद परम गत पावे, जिह प्रसाद

मन समानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा पर फुले साध के संग आवे बस पंचा साध संग व्रत रस पुंचा साध संग हो सब की रेण साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कतू तावे साध संग अस्थित मन पावे साध के संग माया ते पहन साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध

साध की स्वभाव ते उचि साध की स्वभाव मुहिते मुचि साध की स्वभाव साध बने आई नानक साध प्रभु भेदन पाई सरोक मन साचा मुख साचा सोए अवरना पेखे किस बिन कोय नानक हे लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जय जल मह कमल अले ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जय से सूर सर्व का सोख

वाह कई कोर प्रदेश पर वाह जित जित लावो तित तित लगना नान करते की जान है करता रचना कई कोर सिद्ध जति जोगी कई कोर राजे रस भोगी कई कोर पंखी सिर पे उपाय कई कोर पात्र बिरख निप जाय कई कोर पवन पानी बसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोर ससियर सूर नक्षत्र कई कोर देवदान इंद्र सर छत्र

जाय अष्टपदी मानुख कीटे एक वृथी सब जान देवन कहो के भगवान जिसके दिए रहे गाय बहुर ना तृष्णा लागे आए मारे राखे को आप मानुख कह किस नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होय तिसका नाम राख कंठ परोय सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिगल ना लागे कोय

से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान होते सुखी एको एक एक पछाने ये तो किय सोजी जाने नाम संग जिसका मन माने नानक तिन्ह निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपने आप सजे तिस की जानो त्रिस नाम भूजाय सास

मुरारी थेत पाई जो के ब्रह्म गमन सरनानक हर हर जा सरवण निर्गुण आवसर गुण पियो ही कलातार जिन सगली मोही अपने त्रित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जा नाही कोई सर्व निरंतर एक सोयो तो पोत रव्या रूप रंग पह प्रगा साध के संग

हर सेवा ते पावे जिस सुख का नित बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस जिस सुभा कौ करहे भली करनी सा सोभा भज हर की सरणी अनकी।

जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पात स्यों प्रगट जाए, मन्ने मगना चल्ला पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पाखाहे, असंख नंदक सिर करहे पाहर, नानक नीच कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाम असंख थाम, अगम अगम असंख लो असंख है।

आकाश ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन कवात सहस अठारह कहन गतेबा असुर एक धात लिखा हुए ता लिखी है लिखे हुए विनाश नानक बड़ा आखी है आपे जाने आप।

लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश स आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी भाओ लखो है लखो में लखवीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश ए द्राह पद पवड़िया

आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अभूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अजूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असम है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, अलोक है, अशोक है, कर्म है, परम है, अजीत है, अभीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिरेक है, भुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ती निदाने नमो देव देवे अपेखी अभेवे नमो काल काले नमो सर्वाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व भौणे अनंगी अनाथे अंदर संगी परमाथे नमो भान भाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो भान भाने नमो गीत गीते नमो धान धाने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो भान भाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ती विभूते कलंकंग मिनाने कलंकी स्वरूपे नमो राजराजे स्वरंग ब्रह्म रूपे नमो जोग जोगे स्वरंग ब्रह्म सिद्धे नमो राज राजे स्वरंग परम वृदे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखीय परमी अभोगी भुगते नमो जोग जोगे स्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अभ्रे देव सुधर्मे नमो रोग हरता नमो राग रूपे नमो शाह शाहंग नमो भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमो संग सनाने नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचदानंद सर्वं प्रणाशीय रूपे रूपे समस्त निवासी

दिया नामंग कामंग समस्तो प्राजी समस्तामंग तेरा जोर छाचरी शांत जले हैं थले हैं पीता पे है प्रभु है अजू है देश है भेस है कुजंग प्रयाद शांत अगाधे अबाधे नंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तुं नरनाथे नमस्तुं परमाथे नमस्तुमंग गंजे नमस्तुमंग पंजे नमस्तुमंग काले नमस्तुमंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वेशे नमो राज राजे नमो साजे नमो साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृसंग नमो सर्वरंगे तरभंगी अरंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजय खिजय बीजय समसंग प्रसिजय कृपारंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सदा सर्व सदा सर्वदा हृद सिद्धंग निवासी चरपट छंद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगया चल भोगया चल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अल्लाह कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग तरानंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग भेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुवाल शांत त्वा प्रसाद आद रूपन आद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्वान धर्मान देव भेवाद उदार सर्व बालक सर्व गालक सर्व गोपन काल जतर ततर विराज अवधूत रूप रसाल नाम ठामना जात जागर रूप रंग न रेखाद पुरख उदार मूर्त अजोन आद अशेख देश और न पेह जाग रूप रेख न राग जतर ततर दिशा विशा हो फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेख तामु न जाय सर्वान सर्वतर मांस दय मान ताहे एक मूर्त अनेक दर्शन की रूपानेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देवे बिना जाने जे वेद और गेब रूप रंग न जात पासो जाने के जेब तात मात न जात जागर जन मरण विहीन चकर बकर फिर चतर चक मानी प्रतीन लोग चौदह के बिखे जग जा पे जाप आ देव नाद मूर्त थप्यो सबे जे थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व सब रचयो स्वयं भव गण पंजन हार कालहीन कला सुक्त काल पुरख देश धर्म धाम सो परम रह भूत रख अभूत लख अभेश अंगराग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुखदाय काम आप रूप अमीक अनुसद एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्वंजनाद रूप सूत

महान शाह राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्रबालान बारंकारं कालान काल अनभूतं अब अभंगत्मित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अद्वित प्रचंडमित गदा अखंडाल सकर्मा दृश्य धर्म सर्वापरनाडे अन दंड बाड्या चाचरी शांत त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंगदे करिंग निर्नामे अकामे भुजंग प्रयाद छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्या चतुर चक्र दान्या चाचरी शांतना सत्तर न मित्र न परमंग न पितरे न कर्मंग न काहे अजन्मंग अजाहे न चित्रे न मित्रे परे है पवित्र प्रतिश दिश अदृश्य अकृश्य भगवती शांत त्व प्रसाद कथते के आ छुज देसा के आ पिंज पेसा के आ गंज कर्मे के आ पंच भरमे के आ पिजलोके के आ दित सोके के अभूत भरने के विभूत करने के राजंग प्रवाह है के धर्मंग तुझा है के सा के आ शोक भरने के सर्वा अपरने के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुभव अनुपय के आद अदेव के आप अभेव के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही मेरे हाके के पाग व्यव के गैबल गैब है के अबुल गुनाह है के शाह अनुशाह के कारण कुरिंद के रोजी दहद है के राज करीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देशा है के सर्वत्र बेसा है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र बेसा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र बाल है के सर्वत्र हंता के सर्वगंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेषा है के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीमे के परमंग फहीमे के आकल अलाम के साहिब कलाम है के उसन वजू है तमाम रजू है अर्जू है हमेश सलाम सलीकत मुदाम गनीमल शिकस्त है गरीबुल फरस्त है बुलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम रजुल निदान है हरीफुल अजीम है रजाय यकीन है अनेकुल तरंग है भेद है भंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खराज है नृग स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सुयुक्त सुधा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तो विराज है सदा सर्वसाज है समसुल सलाम सदैव लगा में दरबार सुरभ अगाध है अनुभ ओंगा द्रुपे ना सुरभ अनंगी ना में त्रिभंगी त्रगा में त्रिभर्गम दरबादे अगंजे अगाध सुभंग सर्वागे सुसर्भा अनुरागे त्रिभुग स्वरूप अशिज शुभत के नरकंग प्रणास है प्रथुल प्रवास है नृक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप प्रजुक्त अनुप है नृक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक स्वरूप प्रजुक्त अनुप है चाचरी शांत अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है भरक्त है अनास है प्रकाश है नचंत है सुनंत है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगाह है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनत है सुनत है अजात है अजाद है चरपट शांत त्व प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं धरानं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसाबल शांत त्व प्रसाद नमो नरकरासे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अभंगं विभूते परमात्मं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाव स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामेन्द्र भंगी त्रिकामेन्द्र भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न तात न मात न जात न पात नरसाकं श्रीक मितो मीक सदैव प्रवाह है आजाय है आजा है भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है अमेसुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के सुनल चराग है के कामल करीम है के राज ग्रहीम है के रोजी दहंद है के राज ग्रहिंद है करीमुल कमाल के सुनल जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल नवाज है हरीफुल शिकन है हरासल फिकन है कलंकं प्रनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय ग्रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब गिरा है के नरकं प्रनास है के सर के नरकं प्रनाश है बहसुल निवास है के सर्वोल गमन है महसूल रमन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परंग परमीस है समस्तुल अदीस है देसुल अलेख है महसूल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितो अभिभूत है के मितो प्रसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग

सब मन मन प्रकाश मन मन प्रणाम जल थल मुदाम अंश अंग आसन अभंग उपमा अबार गतमित उदार जल थल अमंड दिस अभंड जल थल महन दिस बेअंत अनुभव नाथ रतर तुरास आ जान बाह एक सदा ओंकार आदि कथनीय नाथ खलखंड ख्याल गुर प्रकार कर कर प्रणाम चित चर नाम अंश जगात अजना बात अंश अंज गात अंदर अंज बात अन टुट भंडार अन ठट अबार अटीट धर्म अत ठीठ कर्म अन भरण आनंदाता महंत हर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अर्कालय है कलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है तीर्थ के तरण है जाके कर्ण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वासे है सर्वनाश है करुणाकर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजप जप अथपा थप अकृता कृत अमृता मृत अमृता मृत करुणा कृत है अकृता कृत धरणी तृत अमृतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत अमृता मृत है अजवा कृत अमृता अमृत है नरनायक है खलकायक है विश्वंबर है करुणालय है नृपनायक है सर्पायक है पपंजन है अरगंजन है रभतापन है जब जापन है अकलंग कृत है सर्वा कृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म आत्म बस है जसके जसे भुजंग प्रयाद छंद नमो सूर्य सूर्ये नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेज नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासंग तामसंग सांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञान भोज भोजे नमो पान पाने नमो गलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे तरभंगी दृगाले अनंगी अकामे एक अशरी शांत अजय अलय अपय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज अभंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगह अटा अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी नारागे नरंगे नरूपे नरेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयाद छंद नमस्वल प्रणामे समस्वल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्वल निवासे निर्गामंग विभूते समस्वल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कनिंदा समस्त निवासी अजाय विभूते गजाय गनिमे हरियं करें करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं भव स्वंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते स्वयं

केते नचे मंगदे अंगड़ मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार ब्याह कढ़े बाजार कावे राजे रानिया बोले आल पाताल लकटकिया की मुंदड़े लकटक

0: दुनिया अंदर फैल हट शक्ति रजे नाव है उतरे ना ही मैं जिन पटे अंदर बार गुजरते भले संचार तेने हो लगा रब से ती देखने विचार
1: रहस्य

करते हो। महाराज जी इसे तरह भाग लाई रखन आप संगतां नूं गुरु दरबार नाल जुड़िया रहो। सवज अमृत वेले जो पावन श्री मुख गाक साहिब महाराज जी ने सानू बख्शिश की ते ने आओ चितवृत्तियां नूं करिए कागर रसना दी पवित्रता लई और मन दी एकाग्रता दे लई।

प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय हरि अंगद गुर ते अमरदास राम दासे हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिथे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताय सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पात

किन्हा सावी तोला तन जुड़ाई अपने लहा सो सजन टोला सजन सच्चा पातशाहू

रागमाला राग एक संग पंच बरंगन संग लापे आठव नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच रागनी संग चरही प्रथम पैर भी बिलावली पुन्या की गावे बंगली पुन्य सलेखी की पई बारी ए पैरों की पांचों नारी पंचम हरख दसाख सुनाव है बंगालम माध माधव गाव है ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी पात असर पुत्र पैर बगे गाव है गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पंचो थाप है गौंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल रा कौशक संग लाई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उभारा

पांचो संग बरंगन लाभ है। बैरारी करनाटी तरी गवरी गावे असावरी ते पाशा सिंधवी आलापी श्री राग सिंह पांचो थापी। सालू सार सागरा और गौंड गंभीर अष्ट पुत्र सरी राग के गौंड कोम हमीर। खष्ट मेघ राग वह गाव है पांचो संग बरंगन लाभ है। सोरठ गौंड मलारी तुणी पौन गाव है आसा गौण गुणी। ऊचै सोर सोहु पुन कीनी मेघ राग स्यों पांचो चीनी। बैरा तार

जाने सोई। किव कर आखा किव सलाही, क्यों वरणी किव जाना। नानके आखण सबको आख, एक दू एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवै। नानक जेको आपो जाणै, अगे गया न सोहै। पातालां पाताल लख आगासां आगास, ओड़ कोड़ कपाल थके। वेद कहनक वात, सहस्य उठारे कहनक तेबा। सलू एक धात,

सुनदायंत अंत न जापे क्या मन मंत अंत न जापे कीता आकार अंत न जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ता के अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने को हे बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब उचा था उचे उपरे उचा ना होए बड़ी उचा होवे कोए ते सूचे को जाने सोए जे बड़े आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तुमाए केते मंगे जो दे अपार केते अगणत नहीं विचार केते खब टुटे वेकार केते ले ले मुकर पाहे केते मूर्खा ही खाए

आदि अनिल अनादि अनाथ जुग जुगे को वेस। आसन लोय लोय भंडार जो किछ पाया सो एका वार। कर कर वेख सृजनहार नानक सचे की साची कार। आदेत से आदेश आदि अनिल अनादि अनाथ जुग जुगे को वेस। एक दूजे पव लख होय लख होवे लख वीस। लख लख गेड़ा आखी एक नाम जगदीस। एतराहे पद पवड़िया चढ़िए होय अकीस। सुन गल्लां आकाश की कीटां आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस।

नाथ कहानी। हे मन चंचला चतुराई किने ना पाया, चतुराई ना पाया किने, तू सुन मन मेरे आय माया मोहनी, जिने भरम भुलाया।

कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगमै गोचरा तेरा अंत ना पाया अंतू ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाने आख है ता वेख सब तू है जिन जगते उ पाया कहे नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया सुर नर मुन जानी अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया जी जनसा तो दे उपाय एक वेख परसने आया लभ लो बंकार चूका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुठा तिने अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिख मार्ग चलना लभ लो बंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना खने हो तिखी वाल हो निकिए तुम मार्ग जाना

जुग जुग निराली। ज्यों तू चलाए तिव चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए तिवह चलाए, जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा। जन नाम लाए से हर हर सदा ते आवै, जिसनू कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे। सुख पावे कहे नानक सचे साहिब, ज्यों पावे तिवे चुलावै। इहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहिला। सतगुरु सुनाया इहो तिन कहे, मन वसिया जिन धुरों लिखे आया।

कहे नानक शब्द रतन हीरा जित जड़ाओ शिव सगत आप उपाय कह करता आप हुकुमरताए हुकुमरताए आप वेखाए गुरमुख से बुझाए तोड़े बंधन हो वै मुगता शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनु आप करे सो हो वै एक स्यों लिवलाए कह नानक आप करता पे हुकुम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पा विचार दे तत्तै सारणा जानी गुरु बाजों तत्तै सारणा जानी तही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अण दिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी आए मनो क्यों विसारी आए वडदाता जगन में हार पंचावे उसने को पोहे न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिवे आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक वडदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में तैसी बार माया माया अगन सब एको जे ही करता है खेल रचाया जां तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जे तर विसराए मोह पुजाए भाओ दूजा लाया कहे नान गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हरे आप अमुलक है मुल ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिले तिसनु सिर सौंपिए विचों आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए हरे आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए हर रास मेरी मन वन जारा हर रास मेरी मन वन जारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जप्यो जियो लाह खट्यो दिहाड़ी

जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री

एक ओंकार सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन हुए चुलंब जी सतगुर पाया मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन हुए।